0: मिला रंग करो तो मराता क्लब तब शीरो थी बिन जिसका नहीं तो चल बुझे हल्का रो वो को
1: ये

मिला रंग का रंग बनाया टोटेंग लो ताला तेरे को यहाँ बंचा बंता कंटाज रे साकी मुताय पंगल गो बंचे टक ये मुताय पंगल गो चे टक बं अब साकी रा सकारित तो चल क्लो उबार से करो कपड़ टेंगा.